0: 97.6
1: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6
2: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक
3: यति बेला बिहानको ठिक 11 बज्यो।

0: पसल दुलेगौड़ा तनहु प्रोभाइडर हरिकुमार श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9856303024।
1: कृषि विकास कार्यालय तनहुको अनुरोध
2: प्रांगणिक कृषि उत्पादनको उपभोग गरौं।
1: रैथाने बालीहरू जस्तै कोदो फापर जौ उवा चिनो कागुनो लट्टे आदि संरक्षण तथा प्रबन्धन गरौं।
2: विषादीको प्रयोग सकेसम्म नगरौं। गर्नै परेमा सुरक्षित किसिमका विषादी सिफारिश विधि अनुसार प्रयोग गरौं। विषादी विष हो औषधि होइन भन्ने कुरा सदैव मनन गरौं।
1: बिउ बिजन खरिद गर्दा आधिकारिक तथा इजाजत पत्र प्राप्त एग्रोभेटबाट लेबल तथा बिल सहितको सिफारिश बिउ मात्र खरिद गरौं।
3: कृषि सामग्री आपूर्ति, कृषि उत्पादन प्रणाली, रोग किरा व्यवस्थापन, उत्पादन उपरान्त प्रविधि, बजारीकरण लगायत कृषि सम्बन्धी अन्य प्राविधिक समस्या आइपरेमा कृषि विकास कार्यालय तनहुमा सम्पर्क गरौं।
2: थप जानकारीको लागि 0635 63 130।
3: कृषि विकास कार्यालय तनहु दमौली।